ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रा जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जांदे हन हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो ब्रैम्पटन विच जे तुसी लब रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स स्पाइसेस स्नैक्स ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानु लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वरगा याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा इसे लिए तुहाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच दे डिनर सारा कुछ है स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी ते फिर देर किस गल दी अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton.

0: भी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: भैन जी तीजा व्याह कैनेडा दे विच ना ही इंडिया वर्गा टेस्ट ना ही इंडिया वर्गी क्वांटिटी छोटिया छोटिया प्लेटा फड़ा देंदे ने जदों दूजी बारी खाना लैन जाओ ते बफे खत्म हो जांदा है।
2: मैनू पता है क्यों, मैंने तवा किचन दी केटरिंग खादी सी। सच्ची कहां तो फूड इन्ना टेस्टी, अनलिमिटेड फूड, इन्ना फूड के मैं खांदे खांदे थक गई पर फूड नहीं मुकिया।
3: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बोवेडा इंटरसेक्शन या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 TAWAKitchen.ca।
4: भाई जी ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
5: ओ इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
6: जी हाँ, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है तो तुहाडी पसंद दा मेक इन मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल विल सेखो 416-819-6000।
7: याद है मैनू जो तो मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, कितनी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, कितने झंझट। थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता, रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221।
1: भैन जी तीजा ड्राइव कर रहे हो, शो नो एंजॉय कर रहे हो, कुछ भूल रहे हो?
2: ड्राइविंग लाइसेंस
1: नो,
2: पुलिस ऑफिसर
1: नो, नो
2: ट्रैफिक लाइसेंस
1: नो।
2: देन
3: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज नाल काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो, होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
1: भैन जी तीजा व्याह है कैनेडा दे विच, ना ही इंडिया वर्गा टेस्ट ना ही इंडिया वर्गी क्वांटिटी छोटिया छोटिया प्लेटा फड़ा देंदे ने जदों दूजी बारी खाना लैन जाओ ते बफे खत्म हो जांदा है।
2: मैनू पता है क्यों, मैंने तवा किचन दी केटरिंग खादी सी। सच्ची कहां तो फूड इन्ना टेस्टी, अनलिमिटेड फूड, इन्ना फूड के मैं खांदे खांदे थक गई पर फूड नहीं मुकिया।
3: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बोवेडा इंटरसेक्शन या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 TAWAKitchen.ca।
9: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी, ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए, सर्विस भी टॉप नॉट सी, टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी, करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी तां हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे। ट्राई तवा किचन फॉर द बेस्ट केटरिंग इन टाउन, फ्रेश फूड, ग्रेट सर्विस एंड अनफॉरगेटेबल टेस्ट। बुक योर नेक्स्ट इवेंट नाउ 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन 905-790-1699 905-790-1699।
10: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, इतनी तरकीबा लगा चुका पर

0: भी कोई गल नहीं बन रही।
1: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
2: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
3: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
4: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: जे तुसी भी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तो तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015।
1: नमस्कार सत श्री अकाल, मैं आपका खुदा बख्श एंड आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू परफॉर्म एट माता जी की चौकी।
2: मान तू बताया मेरा दुख सारे काल के
1: ऑन 4th सितंबर एट Eros, the convention center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Harman. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शाम म्यूजिक और भक्ति से भरी होगी। हम इस दिन को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबने अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जितने भी आपके क्लोज है सबके साथ आना है। सो गाइज, सी यू ऑन 4th सितंबर।
3: दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, मदा फॉर द मंसरा जंस
4: टोरंटो, गेट रेडी पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन, रियल्टर रव सिंह, सेलुलर पॉइंट्स, ए टू जेड किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट

0: 530 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
1: बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
2: ए की गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
3: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के वतनों दूर किरण होनी पेश करनगे, नाल दी नाल मनप्रीत जी इंडिया तो खबरां पेश करनगे, सुखी निज साहब भी हाजरी लाउणगे। सब तो पहला छतरी छत रिपोर्ट हाजिर है जी। अज 6:34 ते सूरज आया ते 8:04 ते चले जाना। मामा चंद सिंह 7:31 ते शाम नूं आएगा, सवेरे 4:46 ते चले जाना। अज दा तापमान 26 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड। कल नूं चखड़ झोले, थंडरस्टॉर्म, मीह नेरी सब कुछ आएगा। तापमान 28 डिग्री। फ्राइडे नूं 25 डिग्री तापमान, सूरज चमकदा रहेगा। सैटरडे नूं 26 डिग्री तापमान, सूरज चमकदा रहेगा। संडे नूं मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, 27 डिग्री। मंडे नूं 28 डिग्री, सूरज चमकदा रहेगा। हल्की हल्की बदलवाई दे नाल किते ना किते माड़े मोटे बारिश पएगी। हेटी वर्गे मुल्कां च खतरे की घंटी खड़कती रहिंदी है। 47 लोगों का कतल कर दिता गया एक गैंग वालों, ते बहुत सारे लोगों नूं किडनैप करके उतों लै के भजा के लै गए। किडनैप वालों की गिणती तकरीबन 50 दसी जा रही है। पिछले हफ्ते लॉ ब्लॉज वालों ने फैसला कर लिया ग्रोसरी चेन ने कि जिहड़ा दालां सब्जियां उत्थे फल फ्रूट पए ने उन्होंने जो लिखा ने कैनेडा का, यह मैक्सीको का, यह USA का, वह सारे साइन सूंजे चकते उन्होंने। भाई साहब फिर साढ़े जे कनेडियन ने हो गए गुस्से, कहते ये की किया हूँ। उन्होंने फिर दोबारा सारे सिंबल ला दते जिदे यह जी कैनेडा का माल है, ये USA का, ये मैक्सीको का, ये इंडिया का। इंडिया का जो हम भी आते अपने ग्रोसरी स्टोर से, वो एक पेटी खोल के टेपा टूपा ला के आ कर और कर नक् संघा संघा। खैर
1: विजन वैनिटीज दे न्यू शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स दे भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ले स्पेशल प्राइसेस। ए नहीं नहीं, वैनिटीज दी परचेज दे सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 9056711800, 905-671-1800।
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: आ भेने खरीद लिया गहने?
4: किथे, छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नहीं मिलिया चंगा सोना।
3: ले ए भी गल कोई कहण दी है, सोना ता सोना ही हुंदा है, गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है।
4: गल ता तेरी सही है भेन, किथों मिलणगे गहनियां दे सोने डिजाइन।
1: जनक ज्वेलर्स। जनक ज्वेलर्स ते स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है, जिदे विच तुहानू एंटीक जड़ाऊ ते कुंदन सेट्स, रिंग्स, बैंगल्स ते लेटेस्ट डिजाइन दे डिजाइनर इयररिंग्स भी मिलणगे। जनक ज्वेलर्स। कॉल 9052308800।
5: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
0: Are you ready? टिक्का जंक्शन ले 6474294040। केटरिंग करानी है छोटी बड़े फंक्शन ले, नो प्रॉब्लम, 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम, 6474294040। तुसी इन्हारे बैंकुट हॉल या लॉज में छोटी बड़ी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम, 6474294040, 647-429-4040।
6: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-5500
3: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, si pal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
4: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
5: अगर अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
6: हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल जिम

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असीं लैके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-4161-617-6500।
3: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, Nepal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services Nepal de vecho, puri family vacation Upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna waji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection open.
4: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
5: अगर अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
6: ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ? ਓ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 years ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ।
7: ਡੌਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
6: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-13 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?
8: ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਸੇ ਲਵ ਹੈ,
9: ਯੇ ਕਹਤੇ ਮੁਝਸੇ ਸਭ ਹੈ,
10: ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ।

0: एक चूहा ते कॉकरोच भी। सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
1: है। फिर कॉकरोच ते चूहे ओ हाले महीना पहला ते ट्रीटमेंट कराई सी।
0: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरों बेसमेंट वाले बेडबग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
1: ओ मैं तां कहना घर ही वेच दिंदे आ।
2: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कढो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो। जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं, सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000
3: हाय रब्बा, हुण की बनूं?
4: जे तुसी कार इंजरी च इन्वॉल्व हो गए हो या सट लगी है, गलती तुहाडी या किसी होर दी, तां याद रखो इको नाम बराड टेंबर पर्सनल इंजरी लॉयर।
5: इन्हां कोल है 5 धड़ल्लेदार कैनेडियन जंपा लॉयर्स दी टीम,
4: जो दवांदे ने वध तों वध लीगल सेटलमेंट, नो अपफ्रंट फी। इन्हां दी टीम कोल तक मिलियंस डॉलर तक दी सेटलमेंट करा चुकी है, ते पैसे सेटलमेंट तों बाद ही चार्ज करदे ने। अज ही कॉल करो रूपा बराड गुरा नूं 4-16-991-4939-993-9।
6: रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश नाल जुड़े हो दोस्तों। जे तुसीं अज वधिया खाना पीना चाहुंदे हो फिर पहुंचो अपने नेड़ले ब्रैम्पटन वाले सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट लोकेशन ते। 3 लोकेशंस ने साडे ब्रैम्पटन शहर दे विच, जिथे कि तुहानूं सवेरे 2 बजे तक ताज़ा ताज़ा वेज नॉन वेज पूरा स्वाद इंडियन फूड मिलेगा फ्रॉम सिंपली इंडियन। 275 गार्डन ब्रुक ट्रेल एंड कैसलमोर, कैसलमोर ते गार्डन ब्रुक ट्रेल ते पहली ओरिजिनल लोकेशन है। दूजी लोकेशन है मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल 85 मॉन्टपेलिए स्ट्रीट ब्रैम्पटन, ते तीजी लोकेशन है 15 फैंडर वे विच इज एट बोवेर्ड एंड चिंकूजी। सो सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट एवरी डे कोई ना कोई चेंज होंगी वेज नॉन वेज मल्टीपल आइटम, ते बाय वन गेट वन फ्री जबरदस्त डील भी मिलती है। लाइव ट्रक केटरिंग करवानी है, ये अपने सारे शेफ भी सर्वर भी पूरी टीम ही भेजते हैं। कॉल 905-794-8111 905-794-8111। नवी एनक तैयार करवानी है, वह भी सिर्फ $99 दे विच, चाहे सीधे इंश्योरेंस में बिल किया जाए तुहाडे लई जां तुसीं सीधे पल्लों ही पे करना है, खर्चा उन्ना ही रहना है। क्लीयर व्यू आई केयर 11615 McVean Drive, Brampton, Mayfield and McVean. Mayfield and McVean te han, 11615 McVean Drive at Mayfield and McVean. Do Canadian born and educated badiya doctor ne, Dr. Ramandeep Hare te Dr. Harpreet Hare, jo ke tuhade layi professional optical sevaawan provide karde ne, tuhadi boli bolde ne, so buzurgan nu vi leke jana, koi bhi language barrier honi nahi hagi. 905-913-4545 905-913-4545. बहुत ही सोहनी एनक तुहाडे प्रिस्क्रिप्शन दे हिसाब नाल ए तैयार करके देंगे विद सिंगल विजन लेंस फॉर ओनली $99.99 दे विच। 905-913-4545 आ सी साडा अज दा देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो प्रोग्राम। कल नू फिर हाजिर होवांगे 3 to 6 PM तक 3 घंटे लगातार। प्रोग्राम तो बाद हुण कोई गलबात करनी होवे, साडे किसी भी एडवरटाइज दा फोन नंबर चाहिदा होवे, तुसीं आपदे बिजनेस नू साडे नाल एडवरटाइज करना चाहुंदे हो, गिव अस अ कॉल टेक्स्ट और व्हाट्सएप एट 416-457-3381 416-457-3381 416-457-3381 416-457-3381। प्रोग्राम तो बाद तुसी मेरे नाल समराज सिद्धू नाल कोई भी इंश्योरेंस रिलेटेड प्लानिंग फॉर योर फैमिली, लाइफ इंश्योरेंस, मोर्गेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस दी प्लानिंग करवाना चाहुंदे हो, सही ते अफोर्डेबल प्लानिंग ही चाहुंदे हो, गिव मी अ कॉल टेक्स्ट और व्हाट्सएप 416-457-3381 416-457-3381 Itu lagi aja satu kali. Yeah.